नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आज रविवार है, सख संबद 1948, भाद्र महीने की 8वीं तिथि, अंग्रेजी सन 2026 की 30 अगस्त है। इस समय सुबह के 5:58:33 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सुबह की यह पहली सभा आरंभ करते हैं।

आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है, तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको हमारे आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ परिचय करा दें। अब से कुछ ही समय बाद आप सुन पाएंगे भक्ति गीत। महिलाओं का कार्यक्रम होगा जो आपके सामने लेके आएंगी तृष्णा चक्रवर्ती। समय रहेगा 6:30 पर। सुबह 7 बजे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। 7:05 पर होगा आज का दिन।

7:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम के तहत कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात में आप समाचार सुन पाएंगे। 8:15 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों के लिए। 8:30 पर होगा आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। सुरो की रंगोली सुबह 8:40 पर। सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप पुआर आंचलिक बातरी यानी कि समाचार सुन पाएंगे। 9:15 से होगा हमारे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुन पाएंगे कुछ खेलमा भक्ति गीत जैतेलियन जैते और साथियों के आवाज़ में। रेंगथोइलियन रंगखोल और साथियों के आवाज़ में सुनेंगे कुछ रंगखोल पारंपरिक गीत रंगखोल कार्यक्रम में 9:25 पर। 9:35 पर जयंतिया कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ जयंतिया भक्ति गीत मेलम वालंग पायरिन और साथियों के आवाज़ में। बेते कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ बेते भक्ति गीत रेमोई डारनेई और साथियों के आवाज़ में। समय रहेगा 9:45 पर। सुबह 10 बजे से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 10:55 से आप सुन पाएंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम, जो देशवासियों के साथ साझा करेंगे। दिन के 12 बजे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। 12:05 से आप एक बार फिर सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रम के बीच आप 1 बजे सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और उसके पश्चात 1:05 से आप दोबारा सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 बजे आप मिड डे न्यूज़ सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15 पर। 2:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप विविध भारती के कार्यक्रम दोबारा सुन पाएंगे। इसी बीच दोपहर 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और 4:05 से आप 5 बजे तक सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है, तो चलिए अब सुनते हैं भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम। आज के इस वीमेन प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही हैं तृष्णा चक्रवर्ती।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम समर्पित है सभी नारियों के लिए, उनके संघर्ष और उनके सपनों के बारे में। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। शुरू करते हैं वुमेन टाइम के साथ।
3: नमस्ते, मैं रूबी रानी दास हूँ। मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। मैं हाफलॉन्ग में पली बड़ी हूँ और मैंने हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और शादी भी मेरे यहाँ पे ही हुआ है, मतलब मायबंग में हुआ है, फिर भी मैं हाफलॉन्ग में रहती हूँ इसलिए। और मैं यहाँ मतलब यहाँ पे बिजनेस करती हूँ। मैं एक बिजनेस वोमेन हूँ और मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सब भी कुछ ना कुछ करें, यही मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।
2: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ है एक खास मेहमान जी। स्वागत करते हैं उषा छेत्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट वन स्टॉप सेंटर सखी पे इज ए केस वर्कर काम करती है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर पड़ता है, जो कि हाफलॉन्ग पे है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू
2: जी। आप अपने बारे में विस्तार से बताइए।
4: मेरा नाम उषा छेत्री है, मैं हाफलॉन्ग की रहने वाली हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे एक बच्ची भी है
2: जी।
4: साथ ही मैं सोशल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ एज ए केस वर्कर
2: जी। जिसे आपने बताया कि केस वर्कर आप काम करती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे केसेस वगैरह रहते हैं और आप लोग कैसे हैंडल करते हैं उसको।
4: जैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, जितने भी वुमेन रिलेटेड केस है जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह जितने भी वुमेन रिलेटेड है वो सब हम लोग केस देखते हैं। तो इसमें आपको कितने दिन के लिए शेल्टर भी मिल जाता है, उस दौरान मेडिकल असिस्टेंट, पुलिस असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट भी मिल जाएगा ताकि जो पीड़ित है उनको कंफर्टेबली केस वो फाइल कर सके। वो ये सब फ्री ऑफ कोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से और उस दौरान उनको खाना पीना रहना ये भी सब फ्री ऑफ कोर्स है
2: जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे आपने बताया आपके काम के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है?
4: मैं एज अ केस वर्कर काम करती हूँ, तो जो भी पीरियड आती है तो उनको कैसे करके हम लोग समझा सके, बुझा सके ताकि उनको काम कर सके, क्योंकि सब लोग डरे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनको हम लोग काम करके उनको समझाते हैं कि यहाँ पे उनका राइट जगह है और यहाँ से उनको हर फैसिलिटीज मिलेगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है, और उनको काउंसलिंग देते हुए, उनको प्यार से सहलाते हुए, समझाते हुए हम लोग अच्छे से उनका टेक केयर करते हैं
2: जी। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है।
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। आपको सोशल वर्क में कब से इंटरेस्ट है?
4: सोशल वर्क में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट में हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो उन्होंने हमको बचपन से सिखाया कि सोशल वर्क करना चाहिए। तो छोटी थी तभी से पापा के साथ सोशल वर्क में जाती थी। पहले तो जैसे कि जंगल साफ करना हो, एक कोई पीड़ित हो तो उनको हेल्प करना हो, तो जैसे कि मेरा घर हॉस्पिटल के पास है तो कोई भी बीमार हो तो व्यक्ति हम लोग देखने चले जाते थे
2: जी, जी।
4: तो ऐसे क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क करना
2: जी। जैसे आपने पहले ही बताया था कि आप एक मैरिड वुमेन हैं, तो मैरिड होने के बाद भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं रही है, एंड आपको जॉब पहले मिला था या उस मैरिड के बाद मिला है?
4: मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ
2: जी।
4: मैंने शादी के बाद ही मैंने पीजी किया है सोशियोलॉजी में
2: जी।
4: जो मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, शादी के बाद ही मुझे जॉब मिला, उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया है और मैं कुछ भी करती हूँ हमेशा एज अ फादर मेरे साथ रहते हैं। हस्बैंड एज अ लाइक क्या बोलूँ मैं, जस्ट लाइक अ गॉड, वो एवरी टाइम मेरे साथ है और आज मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ हिम ओनली।
2: दैट्स रियली वेरी गुड। कह सकते हैं कि सपोर्ट का, या कह सकते हैं कि जो पीछे से आपके साथ रहे वो बहुत ज़रूरी है एज अ पार्टनर जी। जैसे आपने बताया ही है कि सोशल वर्क्स में आपको कितना इंटरेस्ट है, अभी हाल ही फिलहाल में फ्लड विक्टिम्स का देखा था और आपको भी हम जानते ही हैं कि आपने भी हेल्प किया है, तो उसके बारे में बताइए।
4: जब फ्लड हुआ असम पे, अपर असम पे, तो देख के मुझे काफ़ी, मैं बहुत ही पीड़ित हुई। तो मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैं अकेले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने देखा कि हेल्थ सोसाइटी काफ़ी अच्छे काम कर रहे, तो मैंने उनको अप्रोच किया। और हम लोग का एक नामघर का सोसाइटी है जो कि मैं नेपाली, मैंने एसएमएस शादी किया है तो मैं थोड़ा एसएमएस कल्चर पे अडॉप्ट करती हूँ। तो नामघर से और हेल्थ सोसाइटी के द्वारा हम लोग ने जाके वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने जितना हम लोग से बन पाया किया है। और उस दौरान भी मुझे बहुत लोग रोक रहे थे, टोक रहे थे, जॉब करती हूँ इस वजह से भी है ना, बट मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव, मतलब मैं कहीं मॉरल मेरा डाउन ना हो जाए इसीलिए वो मोरीगांव से मुझे सपोर्ट करने आ गए थे।
2: जी, तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ों में ही है, लेकिन भी हम जानना चाहेंगे इन चीज़ों के अलावा भी आपकी कोई हॉबी है?
4: मुझे नए लोग से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है, उनका आइडियाज सुनना बहुत पसंद है, और कभी कभी थोड़ा गाना गाना भी थोड़ा सा पसंद है।
2: जी,
4: यू कैन से बाथरूम सिंगर।
2: जी जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, और कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। एक सेंटर आपने बताया, वन स्टॉप सेंटर सखी, ये आप लोग के इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट वही चीज़ें देखता है, इसी वजह से उसका नाम सखी पड़ा है या कुछ और है?
4: नहीं, वो यही है, सखी है, वन स्टॉप सेंटर सखी। वन स्टॉप सेंटर इसीलिए रखा गया था ताकि वो एक स्टॉप सेंटर है जहाँ पे आपको हर प्रकार का हेल्प मिल सकता है। बस हम लोग ये मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का लेन देन हम लोग नहीं देखते और लैंड का नहीं देखते, बाकी वुमेन का जो भी रिलेटेड है हम लोग वो सब देखते हैं।
2: जी, आपके डिपार्टमेंट से ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं?
4: हाँ, हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहता है। अभी 21 अगस्त को जो हम लोग का बोरो हाफलोंग में है, हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी, जैसे आपने बताया अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे वुमेन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
4: बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, एजुकेट होना, क्योंकि आप जब एजुकेटेड होते हो तो आप किसी को एजुकेट कर सकते हो।
2: जी बिल्कुल,
4: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप जब एजुकेट हो जाती हो तो आपको बहुत चीज़ का ज्ञान हो जाता है, और आप जब ज्ञानी हो जाती हो तो आप इंडिपेंडेंट हो सकती हो।
2: जी बिल्कुल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक वुमेन के लिए कितना ज़रूरी है?
4: बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौरान, क्योंकि आजकल बहुत ही महंगा ज़माना है, किसी एक का कमाई से घर नहीं चलता। प्लस आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगी तो आपको कुछ प्यारा लगता है, या फिर आपको बच्चे को देना है, घर में किसी को, जैसे कि अभी शादी करने के बाद हस्बैंड के साथ पैसा मांग के तो आप नहीं दे सकती, घर नहीं चला सकती, के साथ पैसा है तो आप फाइनेंशियली आप हेल्प भी कर सकती हो। और छोटा सा बात है, लेकिन डिपेंडेंट हो गए तो हम लोग एक पेट्स भी खरीदने के लिए हस्बैंड के साथ मांगना पड़ेगा, लेकिन अगर ये छोटा मोटा चीज है जो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट रहे तो हम लोग अपने लिए खुद कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। सोशल वर्क पे आपको पहले से इंटरेस्ट था, तो पढ़ाई पे आपने कैसे उसको लाई? जैसे पहले से ही आपको पता था कि इसी सेक्शन में जाना है, जैसे आपने पीजी सोशलिज्म में किया है आपने बताया?
4: नहीं, मुझे तो जर्नलिज्म पढ़ने को बहुत मन था
2: जी,
4: लेकिन हम लोग 5 बहन थे, भाई बहन, तो पापा का जॉब एक ही था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फाइनेंशियली बैकग्राउंड की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, नहीं पढ़ नहीं पाई
2: जी।
4: तो शादी के बाद मेरा पढ़ाई मेरे हस्बैंड ने ही कंप्लीट कराया, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा जो है, जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को लेकर तुम पढ़ाई करोगी तो आगे बहुत कुछ कर सकती हो।
2: जी बिल्कुल जी, जैसे आपको आफ्टर मैरिज आपको जॉब मिला है, उसके पहले आपने कोई काम किया था कोई एनजीओ वगैरह में?
4: पहले मैं एक आरओ सोसाइटी एनजीओ में काम करती थी, फिर मैं एक टीचर भी थी, मैं संबोधन स्कूल में पढ़ाती थी, फिर माई बैंक में भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे करती थी, और मैं संबोधन स्कूल का भी टीचर रह चुकी हूँ।
2: टीचिंग जर्नी के बाद एक अलग प्लेटफॉर्म में है, एक अलग डिपार्टमेंट में है, तो कैसा था आपका जर्नी? हर एक क्षेत्र में आपने अलग अलग लाइफ देखा है।
4: टीचिंग मुझे बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि जैसे कि मुझे सोशल वर्क पसंद है तो वहाँ वहीं भी कहीं ना कहीं सिखाना पड़ता है
2: जी।
4: तो सोशल वर्क करने से पहले जो मैंने टीचिंग मैंने पहले लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि वहाँ टीचिंग एक पेशन है, एक डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, तो ये सब पहले ही मेंटेन हम लोग को करना पड़ता है सोशल वर्क करने के लिए, तो ये टीचिंग जॉब मेरे लिए बेस्ट रहा, सोने पे सुहागा टाइप।
2: जी बिल्कुल, जी, जैसे आपने बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई भी आता है तो काम रहना पड़ता है, उनको काम कराना पड़ता है, तो क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए एक इंसान के अंदर, या क्या चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि लोगों को आप काम कर सके या हैंडल कर सकते हैं?
4: सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत ही काम होना पड़ेगा और बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा, कूल माइंड होना पड़ेगा, ताकि आप उनका प्रॉब्लम, जो पीड़ित है उनका प्रॉब्लम हम अच्छे से समझ पाए। हम डोमिनेट नहीं कर सकते
2: जी,
4: हम बहुत प्यार से हैंडल करके हम लोग उनको बोलते कि हम है अभी, मैं हूँ, ऐसे मैं बोल के तो वो मेरे साथ नहीं आएंगी, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका, उस वजह से आएंगी। तो वो चीज़ हमको सिखाया गया है कि बहुत पेशेंट, डिसिप्लिन और बहुत प्यार से पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा।
2: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। इमोशंस कंट्रोल करना कितना ज़रूरी रहता है इस टाइम पे?
4: बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे पीड़ित आते हैं जहाँ पे हम लोग आंसू को रोक देते हैं। इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कभी तो ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाता, हम लोग बाथरूम में जा रो पड़ते हैं क्योंकि ऐसा हम लोग ने देखा ही नहीं। तो ये इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि किसी से पैसा ही नहीं होता कि घर भी जा सके, तो हम लोग खुद का सैलरी से, हम लोग जो भी पॉकेट मनी हम लोग का है वो ऐसे हिसाब से हम लोग दे देते हैं। ये काम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है
2: जी।
4: बहुत बार तो हम लोग को धमकी भी मिलता है हस्बैंड से, है ना, कि मेरे बीवी को आप लोग ने ब्रेन वॉश कर लिया है
2: जी जी।
4: और आप अभी ऐसा करके मेरे बीवी को बोल रहे हो, मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, ऐसा करके बहुत चैलेंजिंग आता है। लेकिन हम लोग किसी को नहीं भड़काते, हम भी अगर वो केस देना चाहेंगी तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सके हम लोग दो फैमिली को इकट्ठा करके काउंसिलिंग दे के, काउंसिलिंग सेशन भी होता है वहाँ पर, दे के समझा के उनको भी उनका गलती समझा के, बुझा के और एक्ट जो धाराई है उनको समझा के, तो पेचअप करा के हम लोग भेजते, जितना हम लोग का कोशिश होता है वैसे ही करते। अगर पीड़ित अगर रहना ही नहीं चाहते, जैसे कि हाल ही में एक केस हुआ था, उसका कपड़ा हस्बैंड हमेशा जला देता था, वो अगर मायके भी गई तो दरवाजा बंद कर देता, रात भर घर घर के बाहर रख देता, ऐसा करके वो औरत आई तो उन्होंने बोला कि मुझे रहना ही नहीं। आज के डेट में वो इतनी सुंदर से अच्छे से कमा कर अपने बच्चों को पाल रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, तो अच्छा लगता है देख के ऐसा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है ऐसा देखकर। जी जैसे आपने बताया कि पीड़ित लोगों के और किस तरीके से आप हेल्प करते हैं, तो क्या आप लोग जाकर हेल्प करते हैं या जो आकर कंप्लेन करते हैं या अपना इमोशंस बोलते हैं, शेयर करते हैं, उन्हीं का हेल्प करते हैं?
4: नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग रेस्क्यू भी करते हैं। जैसे कि हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है 181, तो कोई एक नारी पीड़ित 181 पे डायल करती है तो हमको डायरेक्ट हेड ऑफिस से फोन आ जाता है कि ये पीड़ित ने फोन किया है, तो हम लोग जाके रात को भी रेस्क्यू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत रात हो जाता है, वो बहुत पीड़ित है, उसको जगह नहीं है जाने के लिए कहीं, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ हाफलोंग पुलिस हम लोग जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और कभी भी ऐसा फोन आता है कि वो फाइनेंशियली बैकग्राउंड की वजह से वो नहीं आ पाती, तो हम लोग जाके मिलते हैं। और आता तो जो जिसको मालूम है संस्था के बारे में तो आते हैं, और जिसको मालूम नहीं वो कॉल करते, तो हम लोग घर भी जाके हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं।
2: जी जी, जैसे आपने मदरहुड आपने फेस किया है, तो बैलेंसिंग करना वर्क एंड सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए?
4: मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरी माँ है मेरे साथ, वो मेरी दीदी भी है, तो मेरा कभी भी ऐसा वर्क लोड ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से मेरे बेटी को देखते हैं और सबको माँ ही बोलती है वो। तो मैं एक प्रकार से बोलने जाऊँगी तो मैं बहुत लकी हूँ, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, सब तरफ से मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट हमेशा मिलता है। कभी हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, रात 9 बज जाता है, कहीं कभी कभी पीड़ित जंगल पे छुप जाती है, उनको बुलाना, उनको हैंडल करना सिचुएशन, वैसा करते करते कभी देर भी हो जाता है, तो मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरी बेटी को प्यार से खाना वाना खिला के सुला देती है। चैलेंजिंग है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं ऑफिस से जल्दी जाऊँ मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। मैंने एक मेरे दिमाग में एक सेट करके रखा है कि जैसे मैं घर जाती हूँ 5-6 बजे, एक घंटा का सेशन में रखूंगी हम लोग कम्युनिकेशन करके, तुम स्कूल में क्या किया, घर में क्या क्या, आने के बाद क्या हुआ, गैस वगैरह, ऐसा करके मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग दोनों का वो जो बॉन्ड है वो बरकरार रहे।
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। वुमेन की लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम का है कितना जरूरी है?
4: बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग वुमेन है और ह्यूमन बींग है ना, कहीं ना कहीं हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब कोई अगर मिल जाता है सहारा या सपोर्ट, तब हमें बहुत एनकरेज होता है। अगर मैं अभी मैं मुझे बहुत अंदर से तूफान है कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे मेरा सपोर्टर जो है वो रोक दे, फिर भी मैं 90% मेरा दिमाग में चल रहा है मुझे करना है, फिर भी मुझे रोक दे, तो ऐसा करते करते मेरा 0% हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है तुम जाओ मैं हूँ, तब आपको क्या लगता है कि दुनिया जो भी बोलना है बोलने दो, मेरा सपोर्टर मेरे साथ है और मुझे ये करना ही है। आप यकीन नहीं करोगी, ये मेरा फर्स्ट शो है ये आकाशवाणी, आपने जब मुझे कॉल किया मैं काफी नर्वस थी, और मैंने हस्बैंड को कॉल किया, बोला कि मैंने ऐसा ऐसा, तो वो मुझे बोलते गए कोई नहीं तुमको जाना है बात ही तो करना है, तुम अच्छा से बात करो, और मुझे मालूम है तुम्हारा जो भी इंटरव्यू लेंगी वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल सोल है, वेरी गुड पर्सनालिटी होंगी, ऐसा करके एनकरेज करते हैं मुझे। तो
2: जी, ये तो बहुत ही प्यारी बात है जी, आपने बहुत ही अच्छी एक बात हमारे साथ शेयर की है। और एक है, जो आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करने जाते हो, तो आप लोग के माइंड में क्या रहता है ज़्यादातर जब आप लोग प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं कि ज़्यादातर लोग इससे समझे और इनक्रेज रहे?
4: हम लोग का मोटिव यही रहता है कि हम लोग ज़्यादातर उनको समझा सके, ताकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वन स्टॉप सेंटर साखी का दरवाजा हमेशा खुला है, क्योंकि बहुत ह्यूमर्स भी है कि पैसा डिमांड करता है ऐसा करके, तो हम लोग पूरा हम लोग का यही रहता है कि आप लोग को जितना हम लोग सके इसके बारे में अच्छे से समझा सके, और आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो आप आके हम लोग के साथ जो भी एक प्रॉब्लम होता है बात शेयर करते हैं, ये गुप्त रहता है क्योंकि हम लोग बहुत हाई प्रोफाइल केस भी हम लोग हैंडल करते हैं, तो किसी भी प्रकार का केस आता है तो ऑफिस के अंदर ही रहता है, ये गुप्त रहता है। तो बहुत लोग को लगता है कि शायद ऑफिस में आएंगे तो बोल दूंगा तो घर में कुछ हो जाएगा, क्लेश लग जाएगा ऐसा करके, लेकिन यहाँ पे 100% गुप्त रहता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई भी व्यक्ति आके उनका पीर बताती है तो ये वहीं पे रहेगा, स्टाफ के अंदर ही रहेगा, और जब तक उनको जस्टिस ना मिले, अब पुलिस डिपार्टमेंट में जाना हो या मेडिकल जाना हो या कोर्ट जाना हो, ये सब गुप्त रहता है।
2: जी बिल्कुल, हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल रहना भी चाहिए चीज़ें।
4: जी
2: जी जी, अगर कोई भी सोशल वर्क, जैसे आप एक सोशल वर्क करना आपको पसंद था पहले से, सोसाइटी के लिए कुछ करना, एंड आप इस फील्ड में आ चुकी हैं जी, कोई इंसान, कोई भी जो स्टूडेंट्स हो या कोई जो सोशल वर्क्स में इंटरेस्टेड है, वो कैसे वो स्टार्ट करे अगर करियर के रूप में अगर चूज करना है तो?
4: सबसे पहले उनको जहाँ पे वो है वो सोसाइटी के ऊपर डील करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं मुझे सोसाइटी ठीक करने के लिए मैं सोशियोलॉजी पढ़ाई कर लिया और मैं कल उतर जाऊंगी फील्ड पे, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में सोशल वर्क करने के पहले आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा, आपका आसपास काम करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा होगा कोई भी एनजीओ में जाके काम करे, क्योंकि फील्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पे बहुत सीखने को मौका मिलता है
2: जी।
4: और पढ़ाई तो पढ़ाई एक जगह, अगर फील्ड वर्क ना हो तो पढ़ाई का कोई वैल्यू भी नहीं होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: तो फील्ड वर्क बहुत ज़रूरी है
2: जी। जैसे आपने फील्ड वर्क में के बारे में बताया, अभी तक जितना भी आपने काम किया है आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
4: एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, एक्साइटमेंट था, बहुत दुख भी था, अप्स एंड डाउन भी था, और अभी तक का सबसे बेस्ट एक मेरा स्टोरी मैं आपको शेयर करने चाहूँगी। एक औरत थी, शादी कर लिया उसने, शादी करके वो अपने हस्बैंड के घर आ गई, वो लोग पहले शादी वादी करके वो लोग बैंगलोर पे शिफ्ट हो गए थे, फिर बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद उनके मम्मी ने बोला तुम आ जाओ घर पे, तो वो घर पे आ गए। घर पे आने के बाद उसको बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, फिर उसने 181 पे डायल किया, फिर वहाँ से हमको फ़ोन आया तो हम गए जहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए, तो उनका हालत नहीं था, बट वो ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट थी। फिर उनके हस्बैंड को जाके वहीं पे हम लोग ने काउंसलिंग दिया है, फिर उनको भी काउंसलिंग सेशन हम लोग ने दिया है। उसके बाद वो लेडी को जहाँ पे काम करती थी उनका हस्बैंड छोड़ के वो चले गए थे, एक्सेप्ट ही नहीं करना, उनका बेबी को भी नहीं करना, अभी जाएंगी कहाँ। फिर वहाँ से उनको बुलाया गया, उनको आना पड़ा क्योंकि ये वन स्टॉप सेंटर तो सिर्फ हाफलोंग पे है या असम पे है ऐसा नहीं, ऑल ओवर दी इंडिया पे है, तो वहाँ से उनको जहाँ पे काम करते वहाँ तक उनको लेटर गया, उनको यहाँ पे बुलाया गया, बुलाने के बाद उन्होंने वाइफ को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद आके यहाँ से उन्होंने उनको जाके बेंगलोर में लेके गए। तो ये बहुत चैलेंजिंग है हम लोग का काम, लेकिन अच्छा लगता है और खुशी भी महसूस होता है कि किसी का जब घर टूटा हुआ देखते हैं तो हम लोग मिलाने के लिए कोशिश करते हैं और काफी लोग का घर भी मिलाया है, तो काफी चैलेंजिंग है
2: जी। जैसे आपने वर्क जर्नी से आपने कोई मेमोरी शेयर किया है, मैं चाहूंगी कि आप अपने जिंदगी का कोई एक मेमोरी हमारे साथ शेयर करें, कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो या कोई बेस्ट मेमोरी।
4: चाइल्डहुड मेमोरीज मेरा इतना नहीं है, क्योंकि जब बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब मुझे घर संभालना पड़ा था। पापा का तबीयत बिल्कुल ख़राब था, तो सबका शादी हो गया था, मैं बिल्कुल अकेली थी घर पे। तो मेरा बचपन तो मैंने

0: शायद मैंने एंजॉय किया ही नहीं, लेकिन आफ्टर मैरिज मैं अभी बचपन में जी रही हूँ हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, तो अभी मैं जी रही हूँ। और जैसे कि आप लोग के जैसे जो देखती हूँ एक्टिव, जो बहुत ही एनर्जेटिक, तो मुझे आप लोग से जुड़ना बहुत पसंद है। तो मेरा मेमोरीज तो इतना खास नहीं है, अभी शायद होगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक दिन ही एक मेमोरी की तरह यादगार
0: राइट
1: रहता ही
0: राइट
1: है। जी बिल्कुल, अब हमारे कार्यक्रम के भी हम शेष तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं सबके लिए आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए।
0: मेरा मैसेज यही है, सुने जन की करे मन की, क्योंकि जन तो बोलेंगे ही, सबका सुनना है, सबका सुनना है, सुन के रखना है, मन करेगा कहेगा कि करना है तो करना है,
1: जी
0: यही। थैंक यू सो मच।
1: जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, और आशा करते हैं जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं सभी को आपकी बातें बहुत पसंद आई होंगी। और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और हेल्प करते रहिए लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी आशा करते हैं आज आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप महिलाओं के कार्यक्रम में सुन रहे थे तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा पेश किया गया ये कार्यक्रम। तो चलिए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

दे प्यार दे इस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। अगला गीत सुनिए कारवा फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और

0: पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। तो श्रोताओं, आज का दिन कार्यक्रम, इसमें आज सुनिए पहले ये कविता।
3: आई एम प्रियंका दास एंड दिस इज अ पोएम आई रोट नेम्ड जीवन की धारा। जीवन की राहें अनगिनत है, हर मोड़ पर नया सवेरा है। चुनौतियां आती है और जाती है, लेकिन जीवन की धारा चलती रहती है। खुशियों और नम के बीच जीवन की राहें चलती रहती है। हर पल एक नया अनुभव जीवन की सच्चाई बताता रहता है। जीवन एक पहेली है, हर पल बदलती रहती है, लेकिन इसी बदलाव में जीवन की खूबसूरती है। जीवन के हर पल को जियो, हर मोड़ पर नया सवेरा है। जीवन की राहें अनगिनत है, लेकिन जीवन की धारा चलती रहती है। थैंक यू।
4: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2020

0: 97 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा, उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दें।
1: अब जान लेते हैं आज के दिन के कुछ खास बातें। 30 अगस्त का भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। इस दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसने भारत के इतिहास को प्रभावित किया। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे और उनकी गद्दी के वारिस थे। दारा शिकोह उदार सोच के मुगल राजकुमार थे। पिता की बीमारी के बाद भाइयों के बीच पिता के साम्राज्य पर कब्जे की जंग तेज हो गई। उस जंग में कट्टर इस्लामी विचारों वाले औरंगजेब विजयी रहे और 1659 में दारा शिकोह को फांसी दे दी। औरंगजेब के सम्राट बनने के बाद देश ने कट्टरता का एक दौर देखा। दारा शिकोह अगर सम्राट बनते तो स्थिति अलग होती। इसके अलावा आज ही के दिन 1559 में महान सम्राट अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर का जन्म हुआ था। 1682 में ब्रिटिश धर्म सुधारक विलियम पेन को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका पहुंचे और पेनिसल्वानिया की स्थापना की ताकि लोग धार्मिक स्वतंत्रता का इजहार कर सके। 1806 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार प्रकाशित किया गया। 1888 में 30 अगस्त क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त का जन्म, जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। 30 अगस्त 1903 को चित्रलेखा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। वह हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार थे। 1988 में 30 अगस्त को राजबिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। 30 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 30 अगस्त 1992 भारतीय रिजर्व बैंक को पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ का निधन हुआ था। 30 अगस्त 1976 में अच्छे कथाकार कहानीकार के अलावा एक बेहतर अभिनेता जीपी श्रीवास्तव का भी निधन हुआ था। 1984 में 30 अगस्त के दिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की पहली उड़ान भरी थी। 2003 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 30 अगस्त को। 30 अगस्त 2008 को बिरला परिवार के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला का भी निधन हुआ था। 30 अगस्त 2014 को देश के प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र बोस का भी निधन हुआ था। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज का दिन कार्यक्रम का कुछ जानकारी। तो चलिए आप सुनते हैं कुछ गीत।

आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूजडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है।
1: গলিয়ে গলিয়ে এই গ্রন্থ শুনা যা, প্রতিটো ঘরে নিজ গণনা করা, আমি লিখিম ভবিষ্যতর ন অধ্যায়, আমার লোকপিয়ল আমার বিকাশ।
2: লোকপিয়লর প্রথম পর্যায়ত গৃহ তালিকা আর গৃহ পিয়ল অর্থাৎ আপনার বাসগৃহর গণনা করা হব। আহক নিজের অংশগ্রহণে ইয়াক সফল করু। প্রতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হোক, প্রতিটি ঘর সংযুক্ত হোক আর দেশ আগুয়ে যাও। লোকপিয়ল 2027, আমার লোকপিয়ল আমার বিকাশ।
0: ইস জানকারি কে বাদ আইয়ে আপ বাতে করতে হ্যাঁ বচ্চোঁ কে ইস কার্যক্রম মে গরমি কে মৌসম মে আপ কিতনা বার নহা সকতে হ্যাঁ, ক্যোঁকি গরমি দিন ব দিন বড়তা যা রহা হ্যায়, জিসকে কারণ বচ্চে বহুত জ্যাদা দিন ভর মে নহাতে হ্যাঁ। আপ সভি কো বতা দে কি আপ की त्वचा रुखी और जलन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए बार बार नहलाने से अर्थात नहाने से प्राकृतिक तेल नष्ट हो जाते हैं और त्वचा की नमी संतुलन बिगड़ जाता है। गर्म और उमस भरे मौसम में साफ और आरामदायक रखने के लिए आप रोज़ाना गुनगुने पानी से स्नान करें, इससे फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं और अनुभवी अर्थात आप अपने आप को अनुभवी बनाएं और हल्का आहार ग्रहण का बेहतर करें। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने में बिजी रहते हैं, आप उनसे परहेज करें। मसले हुए फलों, दूध या पानी से भरपूर ताज़ी सब्जियों से अपनी तरल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे हम और भी बातें करेंगे, तो चलिए सुन लेते हैं ये।

इस गीत के बाद आइए अब बात करते हैं रोग नियंत्रण में सहायता करता है जो खाद्य। बहुत तरह के खाद्य हैं जो हमारे शरीर के लिए उपकारी है, और ऐसे कुछ खाद्य हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपकारी नहीं है। जाने पहचाने इन खाद्यों के चमत्कार उपादान के बारे में हम ठीक तरह से नहीं जानते। आज हम उन महत्वपूर्ण हीलिंग फूड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देते हैं। नींबू, हमारे अति परिचित नींबू जो सभी के घर में होता है, यह बहुत ज़्यादा उपकारी है। गले में इन्फेक्शन दूर करना, बदहजमी दूर करना, सांस की तकलीफ, उच्च रक्तचाप नियंत्रण करना, रोग प्रतिरोध क्षमता की वृद्धि करना और लीवर साफ करना आदि काम करता है नींबू। तो बच्चे, आप ज़रूर नींबू का सेवन करें। नाशपाती, नाशपाती उच्च मात्रा के फाइबर समृद्ध फल है जो रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गोल ब्लैडर को भी नाशपाति साफ करता है। इसके अलावा केला, जो हमारे इस जगह पर बहुत ज़्यादा ही मिलता है, केला स्ट्रेस दूर करता है। जब कभी भी आपको स्ट्रेस लगता हो तो आप उस वक्त एक केला खा ले। केले में 14 ग्राम शक्कर और 150 ग्राम कैलोरी है। ये ब्लड शुगर थोड़ी बहुत बढ़ा देता है, मगर पूरे दिन के लिए ज़रूरत 30% विटामिन B6 बढ़ाता है, जो सेरोटोनिन का उत्पादन वृद्धि करता है। इसके अलावा आप दही भी खा सकते हैं, दही गैस को कम करता है। और अदरक, अदरक सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं, यह आर्थराइटिस तथा हाजमे के लिए भी बहुत उपकारी है। वर्तमान समय में तो ये भी स्वीकृति प्राप्त हुआ है कि अदरक उल्टी लगने के भाव को कम करता है। वैसे कहते हैं कि जर्नी के वक्त अगर आप एक अदरक का टुकड़ा मुंह पे रख लो तो आपको उल्टी नहीं आती। तो बच्चे, आप सभी को अगर कभी कभार उल्टी आता हो तो जर्नी के वक्त तो आप अदरक रख सकते हैं। बीट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। बीट प्राकृतिक एनर्जी सप्लाई करता है। बीट में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी होता है। इस तरह और कुछ हीलिंग फूड है किशमिश, जो रक्तचाप को कम करता है। तुलसी पेट को तकलीफ को कम करता है। शहद कफ कम करता है। बंदगोभी आलसा ठीक करने में सहायता करता है। संतरे का रस थकान दूर करता है। और लहसुन ईस्ट इन्फेक्शन ठीक करता है। और आलू सर दर्द कम करता है। तो बच्चे, आप ये सब खाद्य ले सकते हैं, ये सब सब्जी, ये सब फल आप ले सकते हैं और अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो चलिए आप सुनते हैं और कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत बच्चों के इस कार्यक्रम के तहत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब समय है समाचार का। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है।

0: के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोड़ देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने

0: कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
1: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरनामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आपलन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, अब प्रस्तुति कार्यक्रम सुरों की रंगोली, इसमें आज सुनिए मनोहर उदास के गाए हुए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुरों की रंगोली में सुन रहे थे मनहर उदास के गाए हुए कुछ गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातरी रिले किए जाएंगे।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे स्थानीय भाषा का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनिए खेलमा कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम लेकर आए हैं कुछ खेलमा भक्ति गीत जैतीलियन जैते और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप खेलमा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ खेलमा भक्ति गीत जैतेलियन जैते और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है रंगखोल कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए रिंगथोलियन रंगखोल और साथियों से कुछ रंगखोल पारंपरिक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत मेलम वालंग पायरीन और साथियों की आवाज़ में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। तो चलिए अब सुनते हैं बेते कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए कुछ बेते भक्ति गीत रेमो इडाने और साथियों की आवाज़ में।

श्रोता, अभी आप बेते कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे रेमो इडरनी और साथियों से कुछ बेते भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: আজি কথা পাতি ইমান ভাল লাগিছে, যদিও আপুনি কৈছে যে আজি অলপ অসুবিধা পাইছো গান গাবলৈ, তথাপি আপুনি যিখিনি শুনাইছে ভাল লাগিছে, শ্ৰোতাসকলক আমি শুনাই দিলো স্বামীৰ কথা।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती हैं, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
2: क्या बात है। बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा।

0: साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा बच्चा उस सीजन
1: बिल्कुल
0: को जानता
1: बिल्कुल।
0: है। तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है चलो, माफ़ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ़ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे, हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे
1: मतलब
0: माँ
1: ट्वेल्थ
0: बाप
1: के
0: को
1: एग्जाम के
0: 12th के
1: दौरान।
0: एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड।
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम देके निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते
0: बीच
1: हैं।
0: में गैप्स होते हैं, उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था।
1: अच्छा
0: निकल गई है, इसको रोकना
1: बिल्कुल
0: सही होगा नहीं।
1: बिल्कुल।
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे। और
1: वाह
0: वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेंढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्ज़ा और बर्गर के फोटोज़ और वीडियोज़ देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडोनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी
1: अच्छा
0: अंग्रेजी इसको कैसे आती है। और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए, वो स्ट्रगल मेरे लिए ज़्यादा था। टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं, हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो,
1: अच्छा
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं,
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला आ रहा
0: इतना
1: है।
0: बड़ा। और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया।
0: एक
1: और
0: एक करके
1: दरअसल जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता
0: बनता है,
1: चला जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं
0: नहीं
1: होता है,
0: होता है, करेक्ट
1: बाकी तमाम चीज़ें भी
0: करेक्ट,
1: धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस, हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे बहुत
1: पास
0: डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस, हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को यू नो जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। आप तब आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था, वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना एक फ्रीडम मिल गया हमको।
1: अच्छा,
0: अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने।
0: हाँ।
1: और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात
0: नहीं करता है।
1: कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है।
2: छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव यू नो आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन

0: सकती,
1: ये भी मान चुकी
0: ये
1: थी
0: भी
1: आप।
0: माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा, इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है।
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज़ नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज़ नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए, बेटी बेचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस, ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है,
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है, और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती हैं कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
0: वो भी
1: वो
0: एक होता है
1: जीवन।
0: हाँ।
1: जीवन वो है,
0: बिल्कुल,
1: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है, और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं, अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
0: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
1: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
0: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
1: पूरी
0: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया,
1: और
0: था।
1: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम, रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता
0: तो
1: नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी,
0: अपनी कमजोरी दुनिया के सामने
1: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: हाँ।
1: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
0: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
1: तो
0: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है।
1: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
0: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
1: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
0: आपको लगा नहीं था कि ये होगा कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
1: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
0: हाँ।
1: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे। मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है। मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
0: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
1: जी,
0: वहां से लौटने के बाद
1: हाँ,
0: मन का बांध टूटा
1: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
0: अच्छा, पहले ये तस्दीक
1: पहले
0: हो गई।
1: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
0: अब नहीं
1: स्टूडियो
0: है।
1: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा हो, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
0: और कौन था जो संभाल रहा था?
1: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
0: मतलब
1: हम दुखी
0: हैं। अकेले कमरे में
1: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
0: गजब।
1: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे you know, और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, यू नो। वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और यू नो, क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं। सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को यू नो हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
0: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
1: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
0: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
1: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो दो तीन महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, एक साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
0: वो नहीं किया,
1: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
0: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
1: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
0: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
1: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है,
0: सब मुड़ के देखते हैं
1: ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
0: कलाकार है
1: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है, क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
0: वो पर्दे के पीछे है।
1: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
0: और वो ओझल है,
1: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
0: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
1: जी।
0: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
1: सबका,
0: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान होता
1: है, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
0: हाँ,
1: 2-3 साल के अंतर पर
0: है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
1: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
0: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
1: वहीं होती थी और स्माइल के साथ वहीं रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
0: सिर्फ
1: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
0: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
1: तो
0: बहन की बात चल रही है,
1: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये

0: ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मूड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है,

0: है।
1: क्या बात है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता
0: बिल्कुल।
1: है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है, मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, प्रतीक्षा कीजिए।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी के हाफलूंग केंद्र है। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन की बात, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता से, भारत की जनता से साझा करेंगे। इसके असीमा में रूपांतर इसके तुरंत बाद ही गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे और तुरंत बाद ही मुंबई केंद्र से सुने विविध भारती के कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं मन की बात थोड़ी देर में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी.
2: अरे
1: और छोटी ये तुम्हारे ना,
2: और ये मेरी गुड़िया की ना.
1: पर दादी हाँ आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है. कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो.
1: शुभ शुभ बोलो क्या.
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए.
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. याद रखें समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे. तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात.
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार. मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं. आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं. इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है. साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं. उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है. आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें. यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था. मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा. मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए. मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है. मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com. उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए. साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं. कृष्णा जी नमस्ते.
7: नमस्ते सर. नमस्ते
6: भाई. मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ.
7: सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया. लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके

0: अहोम्स थे जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था। तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि आपने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके। तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास सीख एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में

0: हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल

0: सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है, लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया, 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ईमान पड़े माननীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত শুনিলে। এতিয়া শুনক মন কি বাতর অসমীয়া ভাষান্তর। এই ভাষান্তর অসমৰ আকাশবাণী কেন্দ্রসমূহে রিলে কৰি শুনাইছে।
4: নমস্কার মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, মন কি বাতর আন এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আপোনালোক সকলোৱে জানে এইখন এনে এক মঞ্চ য'ত আমি নতুন পদক্ষেপৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, দেশবাসীৰ নতুন উদ্ভাৱনৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰোঁ। এনেধৰণৰ বহু পদক্ষেপৰ আঁৰত বহুজনৰ জীৱনৰ মূল্যৱান শক্তি বিনিয়োগ হয়। বন্ধুসকল, কিছুদিন আগতে সামাজিক মাধ্যমত কোনোবাই লিখিছিল, আহাৰ মাহৰ একাদশীৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই এয়া জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী যে ইতিহাসক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিবলৈ মই মোৰ প্ৰয়াসৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত তেওঁ কৈছিল, এই পৰিকল্পনা অতি সাধাৰণ। আপুনি এই ৱেবছাইটলৈ যাওক আৰু কোনো এটা বৰ্ষ নিৰ্বাচন কৰক। ইয়াত আপুনি অতি সহজেই গম পাব সেই সময়ত ভাৰতৰ কোন অঞ্চলত কাৰ শাসন আছিল। ময়ো এইটো বৰ আমোদজনক পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ এই বিষয়ে অধিক তথ্য লোৱা যাওক। মই গম পালো এই কাম মুম্বাই।

शहीद भगत सिंह फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हरभजन मान की आवाज में। नक्श लालपुरी के बोल थे। ये था आज का चित्रपट संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एक महिला का कारोबार आगे बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी आगे बढ़ता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला का आत्मविश्वास और मजबूत होता है। श्री मोदी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का जीवंत रूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयासों से लोगों को निरंतर प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया जिन्होंने नदी घाटों सहित सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ जी यात्रा का भी उल्लेख किया जहां 400 मीट्रिक टन से अधिक कचरे को इकट्ठा कर प्रसंस्कृत किया जा चुका है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 675 हो गई है। लगातार वर्षा के बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं। करीब 2400 लापता लोगों में 320 से अधिक विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

0: प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के लिए लोकप्रिय हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुन रहे थे। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं बीत भारती के कार्यक्रम।
2: ये कुदरत फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: लावारिस फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओ, अभी आप बीज भारती के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण

श्रोताओं, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद्यार्थी के कार्यक्रम।

सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में। जो आज के ज़माने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है। वैसे बहुत सारे श्रोता, क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है? हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ ख़ास बात है। क्या ख़ास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं। गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है। आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं। तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र की गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है। दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत। आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए, साथ में हमारी पहेलियां भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता, अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी, सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियां कबीर की ही बानी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे, बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखिए भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे। सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था, ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं।

असली नकली फिल्म से आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी बूझना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही गाना सुनवा सकें जो आप सुनना चाहते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सौंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ाई बो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र की पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में। उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है। और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम फिर विवाह और विवाह के बाद पति के लिए पत्नी का अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, परिणाम स्वरूप मन में उपजी उलझन और फिर फैसला इस फिल्म का थीम है। पर क्या महिला अपने फैसले को तर्क और ठोस मानसिक धरातल पर ले जाती है? इस पर एक पहेली हमने पूछी है आपसे, ज़रा आप भी सुनिए और उस पहेली का जवाब दीजिए। जब लीला नायडू अनुराधा फिल्म में एक और गाना गाती है जिसमें उसकी तड़प है और उसके मन की पीड़ा है, ज़रा वो गाना आप बता सकते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार, या मेरे साजन है उस पार जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई, हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूँ लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना. सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं. यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी. इंतज़ार है और एक दर्द है. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया. भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई. आवारा हूं से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया. वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है. सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं. वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है. आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल. हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं. महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे, ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है. गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ फिल्म गाइड की बात. और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे. लेकिन ख़ास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने. अब ज़रा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी पूछिए. यहाँ पर फिर एक पुकार है.

मधुमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन थी। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। हीरोइन का नाम तो बताएं, हीरो का नाम भी, वैजंती माला और दिलीप कुमार। हमने एक सवाल आपसे पूछा था जब हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था कि एक और कौन सा गाना जिसमें महिला की तड़प है उस स्त्री की, लीला नायडू की। सभी श्रोताओं ने लिखा है कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है पिया जाने ना। सच में ये गाना गाने के बोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है, क्या आपको याद आ रहा है? वो गाना आशा भोसले की आवाज़ में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज़ में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है, एक स्त्री है जो तड़प कर अपने पति से मनुहार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आज़ाद होने से पहले बल्कि देश की आज़ादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने ये फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई ख़ास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं क्या ये गाना आप सबने सोचा था? और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज़ है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से ही हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है? फिल्म का नाम, गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम, फिल्म तीसरी कसम।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और जैसे दिल चीर के रख देता है ये गाना, ऐसे लगता है कि भीतर कहीं धस के स्थित हो गया है, ठहर गया है, ये गाने से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे जज्बात साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता भी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सुनती थी इस गीत को, तब भले इस गीत में छुपे भाव को इतनी समझ ना हो पर अच्छा लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज कोई गाने की फरमाइश नहीं, बस आप बजाते जाइए, आज जो भी बजेगा सब मेरी पसंद का होगा। ये बात तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, और सच कहें तो आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आप जो भी गाने लिखते जाएंगे सब मेरी पसंद के होंगे, और हमें खोजने में, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही कि कौन सा वाला गाना हम बजाएं, कौन सा वाला छोड़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, सली चौधरी ने इस गाने में लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वाले को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर है जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हों तो ये गाना हम सब के लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे, हम कितना बताएं और कितना पढ़ें, आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला गाना है, वो फिल्म है जागते रहो, सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं कई श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखी है एक बार थिएटर में एक बार टीवी पर, राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर, और ये हमने पहली भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम्हें याद करते करते जाएगी रेंसारी, पर्दे पर अभिनेत्री वैजयंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है, महल के सन्नाटे, जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना। दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थीं। वैसे वैजयंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें, सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है, चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए, बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती है प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए। अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा, ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं। कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत दो।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

फिल्म थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें, जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद हैं शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह जो हमें अपने अडिगता सिखाते हैं, शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज़ दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियां भी है, संघर्ष भी और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा, बताइए कौन सी याद ताज़ा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम जरा बूझिए। फिल्म बंदिनी, कौन सी याद ताज़ा हुई और कौन है हीरोइन?

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, ख़ास तौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती हैं। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है, और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की, कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नज़र आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तू सज धज के, लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। ज़रा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहें तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

0: संगम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जी के।
1: श्रोताओ, अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दिन के 2 बजे सुनते हैं अंग्रेजी में मिड डे न्यूज, और 2:15 पर सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार। तो आइए थोड़ी देर में सुनते हैं समाचार।

0: incessant rain. The river was at 8.84 meters at Rajghat against its danger level of 10.36 meters as last reports came in. Six gates of the Gulidiha barrage in Jharkhand have been opened, raising concerns of a further rise in the river. Low-lying areas of Jaleshwar, Bhogarai and Baliapal could face fresh inundation. The rainfall is linked to a low pressure area over northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal, North Odisha coast. IMD says the system is likely to become more marked and move west-northwestwards during the next 48 hours. Extremely heavy rain is forecast in Odisha today and tomorrow, followed by very heavy rain on September 1st. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: In news just in, Prime Minister Narendra Modi has said that India and Uzbekistan will move forward by setting concrete goals within the framework of comprehensive strategic partnership. In his opening remarks during the delegation-level talks with President Shavkat Mirziyoyev, Mr. Modi said that both the countries are elevating ties to the level of a comprehensive strategic partnership. He also expressed happiness over the coincidence of their 15th anniversary of strategic partnership and 35th anniversary of the Independence Day of Uzbekistan.
2: Sukhat sanyog se hum is varsh apne strategic partnership ki 15th anniversary bhi mana rahe hain. Mujhe khushi hai is vishesh avsar par hum apne sambandhon ko comprehensive strategic partnership ka darja dene ja rahe hain. Hum iske antargat thos lakshya nirdharit karte hue aage badhenge.
1: Mr. Modi also extended advance congratulations and best wishes to the people of Uzbekistan on the occasion of their Independence Day, which falls on the 1st of September.
2: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं
1: The Department of Consumer Affairs has notified the Legal Metrology Indian Standard Time Rules 2026. The rules provide for Indian Standard Time as the common time reference across the country for legal, administrative, commercial and other official purposes. The common time reference will support accurate time stamping of banking and digital payment transactions, coordination of railways, airports and other transport systems and also the coordination of emergency and other time-sensitive services. In sports, defending champions Germany will take on Spain in the Men's FIH Hockey World Cup 2026 final at the Belfius Hockey Arena in Wavre, Belgium this evening. It is scheduled to start at 8 p.m. Indian Standard Time. While Germany will aim to defend the crown they won in 2023 and lift their fourth title, Spain will chase their maiden Hockey World Cup trophy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. In his Man Ki Baat program, Prime Minister Modi highlights women empowerment through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youth, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Odisha for today. And defending champions Germany to take on Spain in men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And with that we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से वार्ता की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
2: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
3: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
3: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
4: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
4: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
3: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
4: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
4: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
6: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
3: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
0: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
3: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: श्रोताओं, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी का मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45
1: पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आंखों में सपनों की बारात।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और इस वक्त हाजिर हूं फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार रोशन।

ताजमहल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल उद्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमरखेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश हमें मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, ये फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवबर्मन, फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारे ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण, गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
2: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: ऑल राइट, एज यू विश।

0: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
0: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
0: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
0: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
0: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
0: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
2: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं, तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, that's why I love you, darling। तुम भी कहो ना I love you। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना?
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured।
1: Okay, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: ना
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑलराइट लेट्स कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो
2: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
2: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
2: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना ये झूठी जिद है।
2: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
2: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
2: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
2: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखूं तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं।
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
3: ये साड़ी कब खरीदी?
4: कैसी लगती है?
3: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
4: अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
3: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
4: बस बस बस एक मिनट ये टेबल लो।
3: टेबल किस लिए?
4: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
3: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती।
4: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
3: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
4: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे।
3: नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
4: क्या?
3: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
4: हे भगवान, इनके सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
3: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
4: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
3: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
4: इतने जोर से ना कहो।
3: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
4: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम दोनों ने फोन करने वाले थे ना?
3: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
4: छोड़ो मुझे बहुत से काम है।
3: चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
4: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
3: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
4: तो कितने हो?
3: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
4: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई।
2: तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
5: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
2: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
5: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
2: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। लो, मारो मुझे।
5: रेखा,
2: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
5: मर गया, गोर मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो
2: चुप।
5: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा लो, मैं ही पोछ लेता। आइए चाचा जी। कैसी है चाची जी?
6: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
7: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी?
2: मैं,
7: कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
5: कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
6: हमें देखकर?
5: हाँ,
6: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
7: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
5: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह
6: किसी को रोना नहीं आता, समझे?
7: सीमाए तुम्हारी चाची के।
6: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
7: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
5: अब कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं, जाओ।
2: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
6: मनोहर, बहू को क्या शिकायत है?
5: कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है। बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
7: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
5: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
6: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
7: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
5: नहीं, गलत मत समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
7: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह?
2: लीजिए पानी।
5: इसकी बहन की बेटी लीना।
7: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
5: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा।
7: क्या कहा तुमने?
5: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
6: ये लीना वाली बात क्या है?
5: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
7: अब भी लग रहे हैं क्या?
5: कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखा।
6: नहीं, रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
7: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
5: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
6: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
5: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक। कमाल है,
7: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना तुम्हारे इस नए जमाने से? तौबा भाई, चलो रेखा बेटी
2: जी,
7: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बना कर लाओ।
5: हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है।
6: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
5: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
7: ये बात तो सच कही।
6: क्यों? तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
7: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
5: नहीं चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
6: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
5: लेकिन
6: अभी कुछ मत कहो।
5: आप भी चाची? अरे चाची की चप्पल, तू ही आ जा मेरे।
6: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
7: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
6: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
7: ना समझी है और क्या। नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
6: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
7: अरे जवान है, एक कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
6: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
7: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
6: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
7: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
6: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
7: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
8: नमस्ते चाचा जी।
7: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
8: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
7: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
8: जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला
9: कोई नहीं।
1: अरे
7: तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
8: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
7: हाँ हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
8: आई डोंट बिलीव।
7: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
6: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
7: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
6: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
7: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
6: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूं?
7: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
6: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
7: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
6: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
7: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
6: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
7: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
6: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
7: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
6: तुम क्या अंधे थे?
7: अंधा नहीं, उदार था। उदार?
6: उदार नहीं, उधार थे, उधार। मेरे आने के बाद ही घर में 2 वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
1: चाची जी प्लीज।
6: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
7: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
6: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
8: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
6: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
7: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
1: लीना
8: क्या है?
1: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
8: मैंने तो केवल लकड़ियां लाई थी, आग तो तुम्ही ने सुलगाई।
5: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
8: अंदर है।
5: क्यों?
1: हम जैसा ही हाल है।
5: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
1: हाँ।
5: वाह मजा आ गया।
8: आपको इसमें क्या मजा आया?
5: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
8: मौसा जी सचमुच जोकर है।
1: तुम्हारे मौसा जी हैं?
8: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
1: पसंद? ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ, वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना,
1: हाँ?
0: अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली ऑफ व्हाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो, ऑफ व्हाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ।
1: हाउ नाइस।
0: अच्छा, कल कब आऊं? लीना, 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: ओह यस, आई एम फ्री।
0: हाँ, हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके। लीना, एट लास्ट वी गॉट इट।
1: थैंक गॉड। चलो, पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया।
1: क्या?
0: अरे आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: I love you, Viren. I love you.
0: अरे मौसा जी, हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो, इन लोगों का निपट गया।
3: मूर्ख है लीना।
1: अरे मौसी, तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी, तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
0: और क्या?
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है।
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई।
3: अरे इस पगली ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी, चाचा जी, जल्दी आए। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: डियर डियर, एक बार नहीं, दो दो बार।
5: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाचा जी, 2 बार मैं जीत गया।
0: और मैं भी 2 बार जीत गया।
2: चाची चाची, हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
4: जाओ जाओ, रहने दो। तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था, जीत की झूठी डींगे हांक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
4: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: चाचा जी, ये चाचा जी
5: मर गया। चाचा,
3: अरे ये क्या कह रहे हैं?
5: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये 2 कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
4: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया चाची जी?
3: क्या हो गया इनको?
1: क्या हो गया?
3: क्या हो गया?
4: देखो तो, देखो मनोहर, देखो तो
3: क्या हो गया?
5: रमा रमा,
4: मनोहर मनोहर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
5: डॉक्टर रहने दो।
4: क्या हो गया?
5: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
4: क्या कह रहे?
5: रमा रमा, सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
4: देखो मेरी तरफ, देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई।
5: एक बार कह तो।
4: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
5: खाओ मेरी कसम
4: तुम्हारी। अच्छा, इसका मतलब तुमने
5: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
5: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
6: ये जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
1: अरे यार,
2: अरे भाई, ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, हैं? ये लो, ये लो, रुमाल से आंसू पोछ डालो, हैं? लो, लो, लो, लो। अच्छा लो, मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: डियर, डियर, एक बार नहीं।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ियाँ लाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
7: आना चाहिए।
8: ये जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
9: अरे
1: यार, अरे भाई ये।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
10: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
11: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
10: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
11: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
10: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
11: जी।
10: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
11: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
10: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
11: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
12: कुछ दिल ने कहा,
11: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
13: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
11: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
13: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
12: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
11: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
13: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
11: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
13: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
11: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
12: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
11: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
12: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
11: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय। बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
12: अपनी कहानी उतनी रहेगी।
14: श्रोताओ अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। ताशकंद में आज राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता भी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ समन्वय परिषद का गठन करेंगे।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: श्री मोदी को ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि वे ये सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या कम करने में भी मददगार है। उन्होंने युवाओं से रोजाना कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए देने की अपील की। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।
3: नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलन समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाड़ जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पु ल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा, या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाड़ ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे।

0: पुल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजुअली बैकस्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है।
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी अदा या गजब तीचे अदा।

0: देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर, वो नाटक था।
1: जी,
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे हैं, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया। यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटिया देके हमने दिन भर बजवाया। और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक
0: बहुत
1: रही
0: ज्यादा
1: थी?
0: था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर 1 साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहाँ एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के,
0: जी जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़ियेटू और पड़ेनी। मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेट जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी।
0: जी,
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो
0: जी,
1: ऐसा
0: जी.
1: लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी, जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी, वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सब की अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार 4-4, 5-5, 10-10 सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है, या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे, और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया, और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई, कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा, तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई,
0: मतलब गई
1: गई वो चली गई अभी, अब वो लगभग 1 फरलांग दूर चली गई थी। तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30 बज गए, और गांव में देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है, अब जाए तो कहाँ गए। तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, 2-2 टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था, केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात कि खेती से पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए, तब 11:30 बज रहे थे।
0: और चावल के खेत तो गीले,
1: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
0: वाह।
1: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
0: जी जी।
1: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
0: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
1: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
0: जी।
1: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई,
0: बस पोई। हाँ।
1: तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा, मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
0: रेत के ऊपर।
1: पहला नाम लिखा वाम, मुझे याद है अभी भी।
0: वाह वाह।
1: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची और हम ऐसा कैसा ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए बस में जाए जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
0: अच्छा।
1: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
0: वाह वाह।
1: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
0: सुंदर बात।
1: और ये ऐसा मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
0: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
1: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गाँव से मैं निकला हूँ और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
0: जी बिल्कुल।
1: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
0: जी,
1: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
0: जी,
1: यही बात है। वो
0: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहां आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूं। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलकाजी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलकाजी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलकाजी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलकाजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलकाजी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलकाजी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलकाजी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलकाजी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
0: जी।
1: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
0: दुबले पतले वामन
1: के बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
0: जी,
1: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
0: दाढ़ी वाड़ी थी
1: थोड़ी बहुत
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
0: जी।
1: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
0: जी,
1: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
0: ओके
1: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था, जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
0: बिल्कुल।
1: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
0: ये बात
1: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
0: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
1: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
0: ओके,
1: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
0: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
1: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहां बर्थडे होता है उसको कहां मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाटना बोलते हैं, वो तिकाटना कासरा भर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता है ज्योग्राफी, कब कितना कहां ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी, इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी, जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा, ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी।
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे, पहले

0: टै बोला
1: अच्छा
0: तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है,
1: जी।
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए। तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे
1: अरे गजब।
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूं
1: ओहो
0: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूं सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया अभी तो। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में,
1: जी
0: रबालेर वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है, तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे गजब।
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले, हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में।
1: और दूल्हा
0: हाँ, दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है
1: अंधेरी। वाह वाह
0: मेरे मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार,
1: जी
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं,
1: हाँ
0: जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था,
1: जी।
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां
1: गजब।
0: 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे,
1: लो
0: अब उनको कहाँ ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में, उस गली में, ये यहाँ यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा, तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा
1: गजब।
0: को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है।
1: अरे
0: अब
1: बाप।
0: शादी करे तो कैसे करे। कोई दो मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने ही मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए? तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो, तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिता जी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज।
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम, तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने। वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो।
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब। ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

श्रोताओं, बीत बात के इसी कार्यक्रम के साथ ही आज के हमारे पहली सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। इस समय शाम के ठीक 5 बजे है। श्रोताओं, शाम के दूसरी सभा में यानी कि 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक ले मुझे यानी कि मनुकार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:14 हो चुके हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं, चलिए आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं कुछ ही देर में।

श्रोताओं, कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे मार्ग कार्यक्रम में भक्ति गीत। अर्नीलाल हुलगो और उनके साथियों की आवाज में 6:05 पर 6:25 का समय रहेगा जेमे कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे लोकगीत अब्यातर बे जेमे और उनके साथियों की आवाज में।

6:45 पर आप सुनेंगे संध्या आंचलिक बातोरी। 7 बजे का समय रहेगा दिमासा कार्यक्रम का। इसमें आप सुनेंगे आधुनिक गीत मनोरंजन किम्प्राई और उनके साथियों की आवाज़ में। 7:20 रहेगा करबी कार्यक्रम का। इसमें आप सुनेंगे आधुनिक गीत शरण मिलिकपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

7:40 पर आप सुनेंगे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत रोसलिन सिंगसोन और उनके साथियों की आवाज में। 8 बजे का समय रहेगा मन की बात का असमिया संस्करण। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। 8:45 रहेगा समाचार संध्या का। 9 बजे आप सुनेंगे हेलो हाफलॉन्ग फोन इन प्रोग्राम। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्रगीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

तो श्रोताओं, शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम से भक्ति गीत। आमिलाल होलगांव और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मार्ग कार्यक्रम में भक्ति गीत अर्नीलाल हुलगांव और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ मार्ग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है जेमे कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। सुनते हैं लोकगीत अभ्यातर्बे जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जेमे कार्यक्रम में लोकगीत अभियातर बे जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ जेमे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब समय हो चला है संध्या आंचलिक बात तोरे का, तो सुनते हैं असमिया में समाचार कुछ ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मनोरंजन किम्प्राई की आवाज में दिमासा आधुनिक की। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब समय हो गया है कुकी करबी कार्यक्रम का। सुनते हैं आधुनिक गीत शरण मिलिकपी की और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गरबी कार्यक्रम में शरण मिलिकपी और उनके साथियों की आवाज़ में आधुनिक गीत। अब समय हो गया है कुकी कार्यक्रम का। सुनते हैं भक्ति गीत रोसलिन चांगसन और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग,
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत रोसलिंग सिंह सोन और उनके साथियों की आवाज़ में। अब समय हो गया है मन की बात कार्यक्रम का। अभी आप सुनेंगे मन की बात का असमिया संस्करण। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन की बात का असमिया संस्करण आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।
1: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दें।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

श्रोताओं, अब शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का सिलसिला। सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में प्यार कोई खेल नहीं फिल्म का ये गीत। संगीत दिया है ललित सेन ने और गीत के बोल भी ललित सेन ने ही लिखे हैं। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्यार कोई खेल नहीं फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में इसी फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है समाचार संध्या का। सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज़्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
4: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
4: PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
4: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
7: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: नमस्कार दोस्तों, आज दिन है रविवार। हेलो हाफ लॉन्ग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज की होस्ट आपकी दोस्त रिनी। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हाफ लॉन्ग।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम भाया, तहसील रायटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ। मैं
0: एमपी से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप और मौसम कैसा है वहाँ पे?
1: मैम आज तो धूप निकल गया, कल तो झिमझिम बारिश हो रही थी, आज तो मतलब धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है मतलब आज।
0: बढ़िया बढ़िया, बताइए।
1: काम कर रहा था, कपड़े काटते काटते मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार टाइम हो गया, फोन लगाता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ मैं, कपड़े सिलता हूँ।
0: अच्छा बढ़िया, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है चांद, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, तू मेरा मैं तेरा, जाने सारा हिंदुस्तानी सब बोल है गाने से।
0: जी, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार धीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से बात कर रहा हूँ। अगर आप गुजरात आओ और पाटन जाने की भाव अगर देखने ना हो तो आपका गुजरात प्रवास अधूरा रहेगा नहीं।
0: जी बिल्कुल, हम जब आएंगे बिल्कुल बताएंगे। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज गाना सुनना है मुझे, पिया हो पिया जाने तमन्ना फिल्म का गाना है।
0: जी धन्यवाद, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हाफ लॉन्ग।
1: मैं हरा से।
0: जी
1: मेरा नाम इखलास दीदी।
0: जी इखलास जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: कितने दूर कितने पास।
0: धन्यवाद, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार जी। गोलाघाट
0: नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: से मोहम्मद कासिम बोल रहा हूँ।
0: आप कैसे हैं?
1: अच्छे है, मैं तो साइकिल दुकान में हूँ।
0: गोलाघाट में मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अच्छा है, पूरा धूप चल रही है, फास्ट लगाया हुआ है। मेरे फ्रेंड ने फोन दिए, नंबर दिया है।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं लाल लाल दो पत्ता मलमल का गाना एक सुना दीजिए। और मेरा फ्रेंड भी है, उसको नाम बोल सकता हूँ
0: जी बताइए।
1: तो अमल बसुमतारी है, विमल बसुमतारी, भाईकन मुंडा, रमेश पात्र, श्री भूमिका है, प्रेमजीत चक्रवर्ती, सुनीता बसुमतारी भी है, और शिकारी रंगफार है, लुकुमिल्ला मिश्रा भी है। सारे आप लोग को भी मैं डेडिकेट करता हूँ।
0: धन्यवाद। चलिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो हाफलोंग, नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ। मैं
0: तनुश्री जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कहने के बोले फूलों का तार का सबका
0: जी बताइए।
1: अकेले तो डेडिकेट आपको रहेगा, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमा जी, अविनाश जी, राकेश जी, शिमला से गंगाधर सावनकर जी, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है, राम बाबू शर्मा जी है, और गजराज लोधी जी है, और आसाम से भाई है अमोल भट्टाचार्य और रमेश पात्रो, और लास्ट सुनते हुए सभी श्रोताओं के लिए।
0: धन्यवाद। चलिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो हाफलोंग,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून। आपका नाम
1: अनु पांडे।
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मैं सुनना चाहूंगी गाना चोरनी मूवी से, दिल चोरी सादा हो गया।

0: हेलो हाफलोंग,
1: हेलो हाफलोंग, नमस्कार।
0: नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं नामती स्टेशन सरेली से बात करता है। मेरा नाम मिस पुनोती दत्त। काश लाभ लेता फिल्म का गाना सुने, गाय कलाकार है लता मंगेशकर।
0: गाने के बोल।
1: जब से

0: हेलो हाफलोंग।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुजफ्फरपुर से राजू कुमार। बहुत
0: राजू जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं और रेडियो से जुड़े रहते हैं जी।
0: जी बहुत ही बढ़िया, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: रेशम की डोरी, हाँ उसमें रक्षाबंधन का गाना है, यही
0: जी
1: गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
0: जी चलिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं। धन्यवाद।
2: रेशम की डोरी

तो ये था इस हफ्ते के हेलो हाफलॉन्ग कार्यक्रम का आखिरी कॉल। अगले हफ्ते शनिवार और रविवार फिर से हम हाजिर रहेंगे आपके साथ हेलो हाफलॉन्ग की और एक कड़ी लेकर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। आप अपने कॉल के जरिए आपके पसंद का गाना अपने दोस्तों को भी डेडिकेट कर सकते हैं। कॉल करने का समय रहेगा बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल आकाशवाणी हाफलॉन्ग है। तो आज के लिए मुझे यानी रीनी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो हाफलोंग फोन इन प्रोग्राम। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है चित्र गीत कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। तो सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गाना के की आवाज़ में, फिल्म जन्नत का ये गीत।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत मशीन फिल्म का। चलिए सुनते हैं अगला गीत मेट्रो फिल्म से पापोन की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्र गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। साथ ही समय हो चला है आज की दूसरी सभा को यहीं पर समेटने का। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:18 हो चुके हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।